आकाशवाणी नागपुर का ये है विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट।

0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और दिन में 3:00 का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा, इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, जीवन शैली और योग। इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने।

शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जयमाला, और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में, जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने ही। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल, झलकी नीम हकीम। इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक, और 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10 बजे का समय छाया गीत कार्यक्रम का है, और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंगियों की बात की थी। आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मियाँ कल्लू खान, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न है किंतु वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में

संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। आईने और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खां।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड़ स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा तात का तार मंद्र सप्तक के षड़ स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का

विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपोर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये दिल्लगी फिल्म का गाना सुरैया और श्याम की आवाजों में, शकील बदायूं ने की बोल, संगीत नौशाद अली का। आज अभिनेत्री और गायिका सुरैया को उनके जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। अगला जो गीत है ये बड़ी बहन फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत हुस्नलाल भगतराम का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ श्याम सुंदर का संगीत बत्ते किया, ये गाना सुरैया की आवाज में, फिल्म का नाम 4 दिन।

अंतराल का समय पूरा हो चुका है, हम हाजिर हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। दास्तान फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का।

लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है हुस्नलाल भगत राम का।

आज का बुली बिसरी गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: ये आवाजें थी सुरैया और तलत महमूद की, शब्दकार मिर्जा गालिब, संगीत गुलाम मोहम्मद का, फिल्म मिर्जा गालिब।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चांद और सूरज। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत सलील चौधरी का।

मोहब्बत इसको कहते हैं, ये फिल्म का नाम है। मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है खय्याम का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको अनजान का लिखा हुआ गाना हम सुनवाते हैं। जीएस कोहली का संगीत, फिल्म का नाम नमस्ते जी।

0: शॉपिंग भी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है
1: तो ऐसा बोलो ना
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान ये हुई ना बात
2: क्यों छोटे साहब वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ करोड़ों परिवारों का कल्याण
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अगला गाना आपको सुनवाते हैं वक्त फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

वक्त फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, सहेल लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का। इस गीत के साथ ही आज का हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री

0: गाय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूशनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

0: पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से

0: अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

0: अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री फिल्म का गाना, आस्था गिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्य कुमार की आवाज से वायु को लिखा हुआ गाना, सचिन जिगर का संगीत है।

0: संगीत भूले बिसरे गीत,
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लव यात्री फिल्म का ये गाना है। देव नेगी योयो हनी सिंह इनकी आवाजें हैं, शब्बीर अहमद योयो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला इनका लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बागी फिल्म का गाना मोलाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में कुमार का लिखा हुआ गाना मीत ब्रदर्स का संगीत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।
1: मन

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही।

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूंगा।

0: जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।
1: बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर।

1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साये में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: लाइव फोन इन कार्यक्रम कॉफी विद गार्डियन। श्रोतेहो नमस्कार, कॉफी विद गार्डियन या लाइव फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज या लाइव फोन इन कार्यक्रमात आपण बातचीत करणार आहोत हृदयरोगांविषयी आणि आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर निकुंज पवार आणि डॉक्टर सूर्यप्रकाश असावा। आपले प्रश्न, आपल्या शंका आपण डॉक्टर निकुंज पवार आणि डॉक्टर सूर्यप्रकाश असावा यांना विचारू शकता आणि आमच्या या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता। त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स लक्षात घ्या। फोन नंबर्स आहेत 6940067, 2560101 आणि 2529266। 0712 हा एसटीडी कोड जर आपण नागपूरच्या बाहेरून फोन करणार असाल किंवा आपल्या मोबाईलवरनं कॉल करणार असाल। गार्डियन हॉस्पिटल धंतोली नागपुर प्रस्तुत कॉफी विथ गार्डियन, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर और विविध भारती नागपुर पर एक ही समय। आज हम इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं हृदय रोगों के बारे में और हमारे साथ है डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा से पूछिए और इस प्रोग्राम में सहभाग लीजिए। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। फोन नंबर्स हैं 6940067, 2560101 और 2529266। 0712 ये एसटीडी कोड ज़रूर डायल कीजिए अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं। डॉक्टर निकुंज पवार नमस्कार, डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: आप दोनों का स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। आज हम थोड़ा ही सा टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। आजकल एंजियोग्राफी तो हम सुनते आ रहे हैं, करते हैं, कई कई नई तकनीक एंजियोग्राफी में आई है, लेकिन सीटी एंजियोग्राफी नई तकनीक है, उसके बारे में कई बार सुनते हैं, तो इसमें और जो एंजियोग्राफी करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्यों की जाती है और इस सीटी एंजियोग्राफी के साथ कई टेक्निकल टर्म्स जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे।
1: एक ये जो एंजियोग्राफी इन जनरल टेस्ट है वो हार्ट में ब्लॉकेजेस है क्या, है तो कहाँ है, कितने हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या ज़रूरी है
0: जी।
1: ये सब का जवाब देने के लिए जो टेस्ट होती है, जो एक फाइनल गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है, वो है एंजियोग्राफी
0: जी।
1: अभी एंजियोग्राफी करने का एक लगभग पिछले 40-41 साल से जो एक कन्वेंशनल जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो है कैथेटर एंजियोग्राफी। कैथेटर एंजियोग्राफी मतलब हम लोग एक वायर और एक कैथेटर पास करते हैं अपने हाथ या पैर की नस में से जो हार्ट की धमनी तक पहुंचती है, फिर बाहर से उसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस कितने हैं क्या है, एकदम डायरेक्टली दिख जाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी जो करने वाली जो एक सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है कैथेटर एंजियोग्राफी, स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी। आजकल पिछले एक लगभग एक या दो दशक से सीटी एंजियोग्राफी नाम की एक टेस्ट आई है जो सीटी स्कैन द्वारा की जाती
0: अच्छा।
1: है, जिसे नॉन इन्वेजिव मतलब जिसमें अच्छा। कैथेटर वायर पास करने की जरूरत नहीं है
0: अच्छा।
1: ऐसी वो टेस्ट है जो सीटी स्कैन द्वारा की जाती है। उसका पिछले कुछ 2-4 सालों से प्रचलन ज्यादा हुआ है क्योंकि एक नॉन इन्वेजिव इजी 5 मिनट में हो जाएगी ऐसे करके जिसे प्रमोट किया गया है। अभी तक गाइडलाइंस में उतने स्टैंडर्ड उसे प्रमोशन नहीं है
0: अच्छा।
1: कि हाँ इससे 100% कन्विंसिंग आंसर मिलेगा। उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते 70-80% है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का एज कितना है
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो कैल्शियम को पिकअप करता है
0: अच्छा।
1: कुछ एडवांटेजेस उसके ये है कि वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से ज्यादा स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देता है क्योंकि आर्टरी के अंदर के ब्लॉकेजेस के अलावा आर्टरी की जो वॉल रहती है, बाहर की जो परत रहती है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि ब्लॉक्स यूजुअली वॉल में बनना फिर शुरू होते हैं और फिर बाद में उसमें पहुंचते हैं अंदर जो ल्यूमेन रहता है उसको ब्लॉक करते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में जब ब्लॉकेजेस अर्ली स्टेजेस में है उसमें बहुत अच्छे से पिकअप होते हैं, कैल्शियम जब ज्यादा है तो उसमें पिकअप होते हैं। अगर कोई पेशेंट की इच्छा नहीं है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कराने की तो एक सीटी एंजियोग्राफी करा के देख सकते हैं या फिर जिसमें हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल एक रूल आउट करना है कि कुछ है कि नहीं है अंदर, तो एंजियोग्राफी सीटी एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जैसे जिसमें हार्ट की जो नसें है वो नॉर्मल पाथ से जाती नहीं है, वो कुछ अलग जगह से ओरिजिन होता है, अलग जगह से जाती है, इस टाइप के अगर एनोमैली होंगे तो फिर उसमें सीटी एंजियोग्राफी किया जाता है। बाईपास के बाद में कभी बाद में एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ी
0: अच्छा।
1: तो फिर सीटी एंजियोग्राफी एक अच्छा टेस्ट है जिसमें ग्राफ्ट्स के बारे में ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आकाशवाणी नागपुर केंद्र आणि विविध भारती नागपूर वरून एकाच वेळी प्रसारित करीत आहोत।

0: लेकिन एज सच सिटी एंजियोग्राफी का कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से बहुत ज़्यादा फिलहाल एडवांटेज नहीं है
1: जी.
0: इसके लिए एज एक मार्केटिंग करके जो प्रमोशन होता है तो बहुत सोच के प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के गाइडेंस से करना चाहिए, ना कि खुद जाके सिटी एंजियोग्राफी करा लो.
1: जी, जी.
0: तो ये एक चीज़ है. उसमें और एक टेस्ट आई है जिसमें कैल्शियम स्कोरिंग कहा जाता है. जिस सिर्फ मतलब जिसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं इंजेक्ट किया जाता, जिसमें सिर्फ कैल्शियम कितना है अब हार्ट के आर्टरीज में वो समझ में आता है. क्योंकि कैल्शियम जितना ज़्यादा मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस उतना ज़्यादा. एथेरोस्क्लेरोसिस वो चीज़ है जो ब्लॉकेजेस पैदा करती है, बनाती है. उस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. जितना ज़्यादा कैल्शियम स्कोर उतने ज़्यादा चांसेस है पेशेंट के अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप होने के, जो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं उसके ऊपर. तो 300 के ऊपर अगर उसकी वैल्यू रही तो माना जाता है कि सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस होने के चांसेस हैं. लेकिन ये सब डायग्नोसिस के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है क्या मेडिसिन देने हैं, कौन से देने हैं, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है कि नहीं, बाईपास की जरूरत है कि नहीं, सिर्फ मेडिसिन पे मैनेज होगा क्या वो जो बीमारी है, उसका 100% आंसर आज भी कैथेटर एंजियोग्राफी द्वारा ही है. तो ये सारी चीजें सेकेंडरी है, जैसे कैल्शियम स्कोरिंग और
1: एक फोन ले लेते हैं. हेलो हेलो.
2: हाँ नितनोरे बोलतो मी.
0: हाँ बोला.
2: मला प्रश्न विचार, ऍसिडिटी आणि याच्यामध्ये जो हार्ट अटॅक त्याच्यामध्ये जो सिम्पटम राहतात, हा अटॅक टाइमने कसं काय ओळखायचं?
0: ऍसिडिटी आणि हार्ट अटॅकचे जे सिम्पटम आहे, हार्ट अटॅकचा सिम्पटम म्हणजे असतो अँजायना. त्याला स्पेसिफिक वर्ड आहे. अँजायना म्हणजे जे छातीचं दुखणं आहे ते हार्ट पासून आलेलं आहे, त्याला म्हणतात अँजायना. तर बऱ्याच वेळेस नाही का दोन्हीमध्ये समानता असते, कारण आपलं हृदय आणि आपलं जठर म्हणजे स्टमक दोन्ही आजूबाजूला असतात ऑर्गन्स, त्यामुळे बऱ्याच वेळेस समानता असते. पण मी तुम्हाला सांगतो की हार्ट पेन अँजायना इज मोर कॉमन दॅन ऍसिडिटी.
1: अच्छा.
0: इज मोर कॉमन. पण समाजामध्ये असं मानलं जाते की काही दुखलं तर ऍसिडिटी आहे. त्याच्यामुळं जर तुम्हाला 30 किंवा 35 वयानंतर जर नव्याने ऍसिडिटी सुरू झालेली आहे जी आधी कधीच नाही झालेली आहे, तर सर्वात पहिला प्रश्न आपल्या मेंदूमध्ये यायला पाहिजे कुठे हार्टचं तर नाही आहे. कारण तेच एक असं आहे की जे आपल्याला थोडस जीवघेणं ठरू शकते. ऍसिडिटी नाही,
1: बिलकुल
0: असू शकते ती ऍसिडिटी, पण हार्टचं आहे का नाही बघणं गरजेचं असते. कसं ओळखायचं डिफरन्स जनरल माणसाने कसं करायचं, तर नव्याने सुरू झालेली ऍसिडिटी हार्ट पेन असू शकते. जर टिपिकल बर्निंग सेन्सेशन आहे, वॉमिटिंग सारखी फिलिंग आहे, पण बाकी असं अंगावर घाम सुटणे, दम लागणे असा काही त्रास नाही आहे किंवा चक्कर आल्यासारखं वाटत नाही आहे, तर ते युजली सिम्पल ऍसिडिटी असते. आणि युजली जर ऍसिडिटी असेल तर तुम्ही ऍसिडिटीची एक ओमेप्रेझोल किंवा पेंटोप्रेझोल नावाची जर गोळी घेतली तर 15 आतमध्ये पूर्णच्या पूर्ण त्रास कमी होऊन जात असतो. जर 15 कमी नाही झाला तर मग तो हार्टचा आहे का नाही बघणं खूप गरजेचं असते. आणि जे अँजायना असते ते टिपिकल छातीच्या मध्य भागामध्ये दुखणे, दाबून धरल्यासारखं, वजन ठेवल्यासारखं वाटणे, छातीमध्ये घाम सुटणे, चालताना दम लागणे आणि कमी नाही होणे, तो त्रास वाढतच जाणे किंवा चालताना वाढणे, हे लक्षणं हार्ट पेनचे.
1: बिलकुल. एक और फोन लेते हैं. हॅलो हॅलो.
3: डॉक्टर
4: सुन रहे हम लोग, बोलिए.
3: मेरे 4 पहले एंजॉय प्लास्टी हुई है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट था 2.5 सेंटीमीटर का जॉइंट डाल के डाली है, स्टेंट डाली है. तो मुझे आपने जो नई मेथड बोला है भी सिटी स्कैन, उससे क्या मुझे फायदा हो सकता है कुछ मेरे चेक करने के लिए? ऐसा
0: आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है तब उसमें आर्टरी में कैल्शियम था. यूजुअली कोई भी ब्लॉकेजेस में कैल्शियम होता है.
3: अच्छा.
0: हाँ, कैल्शियम एक मैकेनिज्म होता है, जहां पे हार्ट में डैमेज हुआ है वहां पे जो सील बॉडी जिसको प्लास्टर करके सील कर देती है वो कैल्शियम द्वारा ही होता है. तो कैल्शियम यूजुअली हर ब्लॉकेजेस में होता ही है, किसी में कम किसी में ज्यादा. तो आपकी एंजियोप्लास्टी अगर अच्छे से हो गई है जिसमें कैल्शियम वगैरह सब ब्रेक हुआ है और अच्छे से स्टेंट बैठ गया, और अभी आपको अगर तकलीफ नहीं है तो आपको रेगुलर चेकअप के अलावा दूसरा कोई नया इमेजिंग टेस्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है. अगर हाँ आपको कुछ नए सिम्टम आते हैं, जस्ट एक रेगुलर चेकअप करके कोई भी बड़ा टेस्ट नहीं किया जाता. अगर कुछ नए सिम्टम्स आए तो एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है या फिर सीटी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है, बट एज अ रूटीन टेस्ट करके नहीं.
1: जी बिल्कुल. हम एक बार श्रोताओं को याद दिला दें, आप सुन रहे हैं कॉफी विद कार्डियन, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. ये प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं कार्डियन हॉस्पिटल धंतोली नागपुर.

0: आज हम बातचीत कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में. हमारे साथ हैं तज्ञ डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा. हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 6940067 256 0101 और 2529266 0712. ये एसटीडी कोड डायल कीजिए अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या फिर नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं. तो ये सीटी एंजियोग्राफी के बारे में और ज़रूर जानेंगे और बातचीत करेंगे. पहले एक फ़ोन ले लेते हैं. हेलो.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग सर, मैं रानू बोल रही
2: हूँ. हाँ बोलिए.
1: सर, मेरा ये सवाल है कि जो आपने मतलब हार्ट अटैक जो आते हैं, इसमें ऐसी और कौन सी बीमारी है जो इंडिकेट करती है आगे चल के हार्ट अटैक हो सकता है, जो हम टेस्ट करा सकते हैं? तो हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं जिससे ये पता चले? इनविजिबल जैसे रहते हैं, जैसे किसी को बीपी है, थायराइड है या वो है, ये मतलब कैसे हम पता करें कि हार्ट अटैक?
2: एक रेगुलर चेकअप रहता है जिसको हम फुल बॉडी चेकअप बोलते हैं, जिसमें कुछ हमारे बॉडी के जो ब्लड में हमको दिखते हैं चेंज्ड पैरामीटर्स, जिसमें थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. किडनी प्लस माइनस हो सकती है, पर ये तीन अगर डिरेंज्ड हैं तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा हैं. उससे आगे अगर हम नॉन ब्लड के पैरामीटर्स में जाएंगे तो ECG, उसमें अगर चेंजेस हैं तो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तीसरा, जो उससे ऊपर हो जाएंगे तो ट्रेडमिल टेस्ट होता है और इको होता है, दोनों में हमको चेंजेस मिलेंगे. तो इससे अर्थ निकलता है कि आपको हार्ट में कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं, जिसके चांसेस हैं. और उससे सेकंड लास्ट इज सीटी एंजियोग्राफी एंड फाइनल इज एंजियोग्राफी. तो इतने सारे टेस्ट आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से जाते हो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेगुलर चेकअप करना. अगर आपका एक टेस्ट 35 साल की उम्र में नॉर्मल है तो अगला टेस्ट आप 3-5 साल में करिए. अनलेस के बीच में कोई सिम्टम्स आते हैं तो बात अलग है. अगर सिम्टम्स नहीं है तो 3-5 साल में आप टेस्ट करिए. वंस यू आर 40 एवरी 2 इयर्स इफ यू आर नॉर्मल. और अगर कुछ भी अब नॉर्मल निकलता है तो वंस अ ईयर. तो ये मस्ट है, मैंडेटरी है. आप अगर चेकअप करते रहेंगे तो आप प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ रहेंगे
0: जी.
2: आप क्यूरेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, आप प्रिवेंटिव में रहेंगे. ताकि आपको प्रोएक्टिवली दवाइयां दी जा सके या आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जा सके जिससे आपको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो
0: जी.
2: तो मोर और लेस हमको उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो क्यूरेटिव कार्डियोलॉजी है उसमें बहुत एक्सपेंस है और लाइफ लॉन्ग एक्सपेंस है. और सबसे बड़ा उसमें अगर हमने सही समय पर डायग्नोज नहीं किया तो वी कैन लूज आवर लाइफ ऑल्सो. तो ये इतना कठिन, इतना जटिल प्रश्न है. तो समझता हूँ कि आप अगर रेगुलर चेकअप, बहुत ज्यादा नहीं लगता है, आप कुछ अपने आधे एक दिन का टाइम निकाल के जाइए और पूरा चेकअप कराते रहिए
0: जी. बिल्कुल. एक और फोन लेते हैं. हेलो. हेलो.
3: हाँ नमस्ते मैडम. नमस्ते डॉक्टर साहेब, पवार साहेब.
2: हाँ बोला.
3: सर, माझा मित्र 65 वर्षाचा आहे, त्याचा 1.5 वर्षापूर्वी बायपास झाली त्याची. त्याच्या लायच्यामध्ये कॅल्शियमचं डिपॉझिट झालं होतं, कारण त्यांनी खूप कॅल्शियमच्या गोळ्या खाल्ल्या आणि मोबिलिटी बिलकुलच त्यांनी केली नाही आणि वजन त्याचं 84 होतं त्यावेळेला, 84-85. आता त्याचं 1.5 वर्ष झालं, त्याच्या पायावर सूज येते आहे आणि वजन त्याचं 80 आलं परत, आणि त्याला थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे सर, आणि तो एकदम निराश झालेला आहे. परत तो मोबिलिटी बिलकुल परत कमी झाली, जातच नाही कुठे काही. तर काय आता त्यांनी करावं सर? मी त्याला सांगतोय की बाबा तू आहारामध्ये बदल कर, नाही तर काही थायरॉइडच्या वगैरे गोळ्या घे. पण ते
2: नाही, हे बघा, सर्वात इम्पॉर्टंट पायाला सूज येत आहे म्हणजे थायरॉइड आणि हार्ट फेलियर, हे दोन गोष्टी आहे जे सर्वात महत्वाचे आहे. तर एक इको करून घ्या. बायपास झाला आहे याचा अर्थ नाही की हार्ट नॉर्मल असेल. कदाचित हार्ट वीक असेल, लोक वीक हार्ट असूनही गोळ्या बंद करून टाकतात. तर ते गोळे सुरू करणं जर बंद केली असेल किंवा जे आवश्यक औषध आहे ते घेणं हे गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला एक इको करावा लागेल.
3: हा सर, इको कार्डिया केलाय, तो नॉर्मल आहे म्हणाले.
2: बरं,
3: त्यांनी केला इको कार्डिया, तो नॉर्मल आहे.
2: बरं, मग इको नॉर्मल आहे तर थायरॉइडचं बघा. आणि काही औषध असे असतात ज्याने की पायात सूज येते, तर ते तुम्ही तुमच्या डॉक्टरकडे जाऊन ते पायाच्या सूजचं कारण जे आहे, पुष्कळ कारण असतात, किडनी, हार्ट, मग काही आपल्या शरीरात सॉल्ट्स असतात जे जास्त झाले तर पायात सूज येते. तर हे सर्व एक पूर्ण टेस्ट करून बघावं लागेल. आणि जर मोटिवेशन नसेल काही कारणामुळे तर ते मोटिवेशनसाठी तुम्हाला सायकोथेरपी घ्यावी लागेल
0: जी. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कॉफी विथ कार्डियन, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. ये प्रोग्राम आप तक लेकर आते हैं कार्डियन हॉस्पिटल धनतोरी नागपुर. आज हम बातचीत कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में. हमारे साथ है डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश.

0: असावा। आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा से पूछिए और इस प्रोग्राम में सहभाग लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 6940067256 0101 और 2529266। 0712 ये STD कोड ज़रूर डायल कीजिए इन फ़ोन नंबर से पहले अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या नागपुर के बाहर से कॉल करना चाहते हैं। डॉक्टर, अभी ये सवाल जो आया और वो भी बोल रहे थे कि कैल्शियम की गोलियां बहुत खाई और कैल्शियम डिपॉजिट देखा गया, तो क्या ये सही है? और क्योंकि कैल्शियम तो 30-35 के बाद हर एक को बताया जाता है, स्पेशली लेडीज़ को तो बताया ही जाता है कि आपको कैल्शियम खाना ज़रूरी है, तो क्या कैल्शियम की गोलियाँ खाने से हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होता है?
1: नहीं, कैल्शियम की गोलियाँ खाने से कैल्शियम हार्ट में डिपॉजिट नहीं होता है, वो विथ एजिंग, किसी को डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, किसी को बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो जो हार्ट के आर्टरीज भी उसके कारण स्ट्रेस आता है, उसके कारण कैल्शियम जमा होने लग जाता है। तो कैल्शियम की टैबलेट से कैल्शियम जमा होता है ऐसा नहीं, बट कुछ स्टडीज ऐसे आई है रिसेंटली जिसमें जो आजकल ना हाई डोज विटामिन डी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो अगर बहुत ही ज्यादा जैसे 60,000 यूनिट वाली या फिर 6 लाख यूनिट वाली जो इंजेक्शंस है ये अगर मल्टीपल डोजेस में दिए गए है ना, तो कभी कभी वो विटामिन डी बोन्स पे जो एक्ट करना है, इट विल एक्ट ऑन एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो कभी कभी ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ये जो होती है ना उसमें इम्बैलेंस हो जाता है जी। तो एक हम लोग जो बोलते हैं ना कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस है, वो जहां पे जमा नहीं होना चाहिए वहां पे होना शुरू हो जाता है, उसके कारण कभी कभी हार्ट के आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो जाना या फिर किडनी में कैल्शियम के स्टोन बन जाना, ये सब होने के चांसेस रहते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तो
0: एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो,
2: नमस्कार मॅम। नमस्कार डॉक्टर साहेब।
1: नमस्कार।
2: माझा प्रश्न हा होता सर की मी ECG केली आहे माझ्या छातीची आणि ब्लड टेस्ट पण केली आहे, सगळं नॉर्मल आहे सर, पण कधी कधी का होते का जास्त काम केलं आपण, माझं शेती शेतकरी आहे सर मी, तर जास्त काम केलं किंवा जास्त असं स्ट्रेस आला डोक्यावर किंवा टेन्शन आलं तर छातीमध्ये दुखते सर, हे कशाचे लक्षण असतं?
3: वय किती आहे तुमचं?
2: वय 35 वर्ष आहे सर।
3: 35 वर्ष, हे बघा 99% तुम्हाला जे प्रॉब्लेम आहे ते स्ट्रेसचं आहे, हार्टचं नाही आहे, तरी पण जर पुढे तुम्हाला टेस्ट करायचं असेल तर एक ट्रेडमिल टेस्ट करून घ्याल, ट्रेडमिल टेस्ट आणि इको टेस्ट, त्याच्यात जे काही दिसेल त्यानुसार आपण पुढचं निर्णय घेऊ शकतो की पुढची टेस्ट करायची की नाही करायची।
0: बिलकुल। कॅल्शियम डिपॉझिट के बारे में हम बात कर रहे थे और कॅल्शियम स्कोरिंग के बारे में भी, क्या किस एज से ये कॅल्शियम डिपॉझिशन शुरू हो सकता है या एकदम छोटे बच्चों में भी कॅल्शियम डिपॉझिट देखा जाता है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसका मतलब आपने एक्चुअली सवाल ऐसा पूछा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो ब्लॉकेज बनने की जो शुरुआत है धमनियों में कौन सी उम्र से शुरू होती है, तो इसका फ्रैंक आंसर है एज ऑफ 14 से स्टार्ट होता है, 14 की उम्र से है हार्ट के नसों में या फिर धमनियों में ब्लॉकेजेस के जो शुरुआती पार्ट है, जैसे उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में फैटी स्ट्रिक बोलते हैं, सबसे पहले होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मतलब जो हमारी नसों को जो मराठी मध्ये ज्याला म्हणतात आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, ही जी प्रोसेस आहे ती सर्वात आधी डॅमेज होते, ती कमी व्हायला लागते आणि त्यामुळे आतमध्ये जो रक्त प्रवाह आहे त्याचा फोर्स हार्ट धमनीच्या वॉल्वर जायला लागतो, त्याला एंडोथेलियम म्हणतात, त्याला डॅमेज व्हायला सुरुवात होते आणि त्याला एकदा डॅमेज व्हायला सुरुवात झाली की बॉडी त्याला रिपेअर करते, कारण बॉडीचं काम आहे रिपेअर करणं, आणि रिपेअर कसं होत असते, तिथे मॅक्रोफेजेस येतात जे व्हाईट ब्लड सेल बॉडीचे फायटिंग सेल असतात ते येतात, तिथे कोलेस्ट्रॉल येते ते त्यामध्ये जमा होते, नंतर मग हीच प्रोसेस जर कंटिन्यू आहे त्याला फॅटी स्ट्रिक म्हणतात, त्याच्यानंतर हीच प्रोसेस जर कंटिन्यू राहिली तर तिथे आतमध्ये वॉलमध्ये ब्लॉकेज तिथे जमाव होऊन जातो, आर्टरी कसं असते बॉडी थोडी कॉम्पेन्सेट करते, आतली जी पोकळी आहे ती मेंटेन करते, फक्त तिची धमनीची जी वॉल आहे ती थोडी बाहेर फुगायला लागते, त्याच्यानंतरची स्टेज आहे की आतमध्ये जमा होणे आणि मग तिथे कॅल्शियम जमा व्हायला सुरू होते। तर आता ते जे 14 वर्षाच्यामध्ये जो फॅटी स्ट्रिक पासून कॅल्शियम पर्यंतच जी स्टेज आहे ती कमी वर्षाची आहे का ती आपण लांबवू शकतो ते आपल्या राहणीमानावर आहे, ते एखाद्या व्यक्तीमध्ये ते 40 वर्ष सुद्धा असू शकतो तो गॅप आणि एखाद्या व्यक्तीमध्ये तो 15 वर्षाचा सुद्धा असू शकतो गॅप, तर जेवढा आपली राहणीमान चांगलं तेवढं ते प्रोसेस स्लो होऊन जाते.

0: म्हणजे ते खूप दशके आपण पुढे ढकलू शकतो, आणि जर आपलं राहणीमान चांगलं नाही आहे तर ते लवकर प्रोग्रेस होऊन जाईल.
1: आणि एक और श्रोता फोन पे है. हॅलो.
2: हॅलो.
1: हां नमस्कार, बोलिए.
2: हाँ गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ लश्करी बाग नागपुर से
3: जी.
2: तो सर ये जैसे हार्ट अटैक आता है तो कई लोगों को सर बैक पे मतलब पेन होता, तो इसका क्या रीजन होता, मतलब कि कुछ लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि बैक पे मतलब पेन होना भी हार्ट अटैक हो सकता है. और सेकेंड सर एक छोटी सी बात है कि कोरोना टाइम में हमने बहुत सुना थी कि अगर अर्ली मॉर्निंग खाली पेट अगर इंसान लहसुन जो होता ना गार्लिक अगर दो तीन कलियां खाए तो
0: जो बैक का पेन है हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है. लेकिन सिर्फ हार्ट अटैक का लक्षण जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं. यूजुअली बैक पेन स्पाइन से रिलेटेड रहता है. दूसरा कारण है हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट का जो पिछला हिस्सा रहता है, हार्ट एक गोल रहता है, एक बॉल जैसा रहता है एक जनरल, तो अगर पीछे की दीवार में हार्ट अटैक आया होगा तो उसका जो दर्द है ना थोड़ा पीछे महसूस होता है. तीसरा एक रहता है उसे aortic dissection कहते हैं, हार्ट में से जो सबसे बड़ी धमनी निकलती है aorta नाम की, उसमें अगर क्रैक होगा तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है पिछले भाग में, स्पाइन के बीच में, दोनों स्कैपुला के बीच में, तो वो अलग ही दर्द होता है. मतलब पेशेंट को महसूस हो जाता है कि ये दर्द मैंने लाइफ में पहली बार महसूस किया. पीठ में दर्द तो जनरल काफी लोगों को होता है, मुझे लगता है 100 में से 20 लोगों को तो होता ही होगा, लेकिन वो दर्द बहुत अलग है. हार्ट अटैक का दर्द बहुत अलग है, वो इमीडिएटली पेशेंट कैच कर लेता है कि हाँ कुछ तो अलग गड़बड़ है. बाकी फिर कभी कभी दूसरी चीजें भी रहती है, जैसे नीचे के जो पैनक्रियाज वगैरह के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके कारण भी पीठ में दर्द होता है. तो हर पीछे के पीठ का जो दर्द रहता है हार्ट अटैक नहीं रहता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कारण होता है. वो कारण ढूंढना आपका और आपके डॉक्टर का काम है, और कारण ढूंढना ही चाहिए.
1: बिल्कुल. अभी हम पहले बातचीत कर रहे थे कि 14 साल की उम्र से ये जो प्रोसेस है ब्लॉकेजेस बनने की, ये अगर शुरू हो जाती है, और आजकल तो ये टीनेजर्स में ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या जो आपकी ओबेसिटी है वो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, या किस तरह से
3: कंट्रीब्यूट करती है? जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो भी फूड लाइफस्टाइल है आप अगर उसको अच्छे से रहोगे तो ये जो अपना फैटी स्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं और उससे आगे फिर कैल्सिफिकेशन और अंदर पूरा प्लाक्स बनना और प्रॉपर ब्लॉकेजेस होना, ये जो एक प्रोसेस है ये डायरेक्टली फूड डिपेंडेंट है. और डायरेक्टली देर आर सर्टन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि टोटल बॉडी इन्फ्लेमेशन.
1: अच्छा.
3: तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है बाय ईटिंग फूड्स, ओबेसिटी, अगर सब क्लिनिकल डायबिटीज है, सब क्लिनिकल आपको थायराइड है जो आपने डायग्नोज नहीं किया, तो इससे हमारे बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है. ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअसली बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता रहता है. और जब ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो जो मोस्ट ससेप्टेबल ऑर्गन जो बहुत जल्दी सिम्टम देता है वो हार्ट है.
1: अच्छा.
3: क्योंकि हार्ट की नसें जो है वो लगभग 3 मिलीमीटर की रहती हैं एवरेज. तो 3 मिलीमीटर की जो नस है उसमें प्रॉब्लम आना सबसे पहले होता है. बाकी हर ऑर्गन की नस 6 से 8 मिलीमीटर रहती है.
1: अच्छा.
3: तो उसमें जब तक के प्रॉब्लम आता है काफी दशक बीत जाते हैं. हाँ. उससे बहुत पहले हार्ट में असर दिखने लगता है.
1: जी.
3: तो इसलिए अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल बराबर रखी, सबसे पहले जो जैसे द वर्ल्ड इज बिकमिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी सेंटर पूरा दुनिया में होते जा रहा है, इंडिया में होते जा रही है ये चीज, तो इसके ऊपर मेरे को लगता है पेरेंट्स ने बहुत ध्यान करना चाहिए. और दोनों पेरेंट्स आजकल कमाते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्क पे जाते हैं, तो इजी हो गया है आजकल हर चीज ऑनलाइन बुला के खिला देना. बट आई स्टिल रिकमेंड कि अगर इफ यू कैन अफोर्ड अ बाई और समथिंग या कुछ कुक करके जाना है तो somehow you have to come to a conclusion that the newer generation don't suffer what हमारे से 300 साल पहले के लोग जो 40-45 में खत्म हो जाते थे, वो हमारी जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन शुड नॉट सफर द सेम फेट.
1: बिल्कुल. एक और श्रोता है फोन पे. हेलो. हेलो.
4: हेलो. हाँ मैडम नमस्कार, मैं आनंद नायडू बोल रहा था. हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार.
3: नमस्कार बोलिए.
4: ये कैल्सिफाइड जो होता है हार्ट में और एक कोलेस्ट्रॉल में फर्क रहता है क्या?
3: हाँ दोनों अलग अलग चीजें हैं. कैल्शियम भी जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है. दोनों जब एक्सेस में हो जाते हैं तो दोनों गड़बड़ करते हैं.
1: जी.
3: तो कैल्शियम जैसे हमारे पूरे बॉडी का बोन डेवलपमेंट जो है उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है. हमारे जो

0: क्या कहते हैं, एक ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी, ब्लड सेल वॉल की इंटीग्रिटी के लिए कैल्शियम जरूरी है. कोलेस्ट्रॉल वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है.
1: अच्छा.
0: पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण. अगर कोलेस्ट्रॉल में कम रहा करके बोलते हैं बचपन में घी खिलाना चाहिए
1: जी.
0: तो ये सब जो चीजें हैं इसमें रॉन्ग नहीं है, पर ये जो दोनों चीजें हैं दे आर इसेंशियल, बट अगर वो एक्सेस में होती हैं तो वो दोनों जाके प्रॉब्लम करती हैं फिर. तो अब प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला वो सब ऑर्गन में करते हैं, ऐसा नहीं है. वो फैटी लिवर बनाएगा, वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कभी जॉइंट में हो जाएगा, कभी जाके कोई पैनक्रियास में हो जाएगा, कहीं जाके स्प्लीन में हो जाएगा, लंग्स में हो जाएगा. पर प्रॉब्लम वो कहाँ देता है, वो हार्ट में प्रॉब्लम देती है
1: जल्दी प्रॉब्लम.
0: हाँ, तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत पहले पकड़ में आती है, बाकी प्रॉब्लम इंसिडेंटली पकड़ में आती है. कभी जॉइंट की प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आ जाती है क्योंकि मूवमेंट मोबिलिटी में तकलीफ होती है तो इमीडिएटली पेशेंट सीक करता है हेल्प. पर जो हार्ट की प्रॉब्लम है इसके कारण, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के कारण, ये जब होती है तो पेशेंट हैज टू सीक हेल्प. अगर वो इंसिडियस है यानी धीरे धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम है तो पेशेंट लकी है, पहुंच जाता है अस्पताल, चेकअप होता है, वन थिंग, टू थिंग, फोर थिंग्स, अल्टीमेटली कुछ ट्रीटमेंट चालू हो जाती है. अनलकी पेशेंट्स विच आर ऑलमोस्ट 40% इन इंडिया, उनका पहला प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक के साथ रहता है. और उसमें से उस 40% में से 50% डोंट मेक इट. सो दिस इज द बैड स्टैटिस्टिक्स करके हार्ट को बहुत ध्यान रखना है.
1: जी जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है,
0: बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है.
1: और ज्यादा इसलिए चिंताजनक हो जाता है क्योंकि ये जो एज है जो हार्ट अटैक होने की वो
0: हर दशक कम होती चली जा रही
1: है. जी जी. तो जैसे कि आपने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल, फिर से एंड में दो तीन ही मिनट हमारे पास बचते हैं तो वहीं पे आ जाते हैं कि लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करें कि जिस वजह से ये चीजों से हम दूर रह पाए.
0: जितनी बार हम ये कहेंगे उतनी बार मुझे लगता है कम होगा. हर बार इसको हमने रिपीट करना चाहिए ताकि जो अगर 10 लोग सुन रहे हैं नए, अगर वो 10 श्रोता सुन के वो 10 समझें.
1: जी जी.
0: तो सबसे पहले एडिक्वेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिक्वेट स्लीप एट एडिक्वेट टाइम, नॉट एट 5 AM मॉर्निंग टू 12 AM 12 इन द नून. वो स्लीप टाइम नहीं है. स्लीप टाइम आपका है रात में 11 से 5 या 11 से 6. सो दिस इज अबाउट 5-6-7 आवर्स ऑफ स्लीप जो आपको एक नेसेसरी है, जिसमें पूरी बॉडी का रिपेरेटिव फेज होता है. हमारे बॉडी सर्टन एंजाइम्स रिलीज करती है विच रिपेयर, तो वो रात में रिलीज होते हैं. अगर आप जगे हो तो वो रिलीज होने पर रिपेयर नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बॉडी काम कर रही है. सो यू नीड टू स्लीप एट दैट टाइम, ठीक है ना. दूसरा है सेडेंटरी लाइफ को त्यागिए और कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू करिए. व्हाट एवर स्पोर्ट्स में अगर आपको रुचि है तो किसी प्रकार का रैकेट स्पोर्ट्स या बैट स्पोर्ट्स या कुछ भी, स्विमिंग कुछ भी आप लीजिए. अगर नहीं कुछ होता है तो सिर्फ वॉकिंग करिए. तो ये दूसरी चीज. अगर तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, घर में बाहर का खाना मिनिमम आना चाहिए, बाहर जाके खाना मिनिमम चाहिए. आप घर में खाइए, जितना खाइए घर में खाइए. घर में जितना मैक्सिमम आप खाना खाएंगे, घर का खाना सेहती रहता है, हेल्थी रहता है, और उसमें आप तेल का जो सेवन है उसको आप खींच लीजिए, तो आई थिंक सो यू विल, आपकी जो लाइफ है काफी हेल्थी हो जाएगी.
1: बिल्कुल. श्रोताओं, आप सुन रहे थे कॉफी विद कार्डियन, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया कार्डियन हॉस्पिटल धंतोली नागपुर ने. और इस प्रोग्राम के लिए हमें आज तकनीकी सहयोग मिला दीपक भुते और मोहन हेडाउ से, प्रस्तुति सहयोग मिला अतुल साखरकर से. इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे. डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा के साथ मैं कल्याणी गोखले आपसे इजाजत लेती हूँ. नमस्कार.
2: नमस्कार.
1: कॉफी विथ कार्डियन हा लाइव फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी नागपूर आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी.
3: कोशिश करिए.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.6 MHz पर। 10:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी हिंदी गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत।

0: कुमार सानू का गाया ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था नुसरत बदर ने और संगीत था शिबू पिंटू का। गैर फिल्मी हिंदी गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। प्रोग्राम का अगला गीत सुनेंगे इस अंतराल के पश्चात।
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
2: तो
1: है।
2: ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आजकाल भारतातल्या गावोगावी गच्चींचं रूप बदलून गेलंय। जिथे आधी फक्त पापड आणि कपडे वाळत घातले जायचे, तिथे आता वीज बिल शून्य होत आहे। गावोगावी लोक सोलर पॅनल बसवत आहेत, तुम्ही बसवून घ्या। भारत सरकार तब्बल 78,000 सबसिडी देते। 30 लाखांहून अधिक कुटुंबांनी तर आधीच याचा फायदा घेतलाय।
4: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in वर।
5: हर घर सूर्यघर।
6: सभी श्रोताओं का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मिश्र संगीत प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। लीजिए सुनिए साधना सरगम की आवाज में ये गीत, जिसे संगीत में ढाला है अली घानी ने।

इस गीत को संगीत में ढाला था निखिल विनय ने। मिश्र संगीत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। लीजिए सुनिए अलका याग्निक का गाया सलीम बिजनूरी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत दिया है डब्बू मलिक ने।

लीजिए मिश्र संगीत प्रोग्राम में आखिरी में सुनिए इंदीवर का लिखा ये गीत जिसे गाया है नाजिया हसन ने।

लीजिए मिश्र संगीत प्रोग्राम में आखिरी में सुनिए इंदीवर का लिखा ये गीत जिसे गाया है नाजिया हसन ने।

0: फूल और कांटे इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गाया, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। मधुमालती प्रोग्राम का अगला गीत सुनेंगे इस अंतराल के उपरांत।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
0: सभी श्रोताओं का मधुमालती प्रोग्राम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए विरासत फिल्म का ये गीत, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया। गीत लिखा जावेद अख्तर ने है और संगीत अनु मलिक का।

0: मधुमालती प्रोग्राम का अगला गीत सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: कमी व्याजाने लोन पाहिजे ते देखील
2: आपने
3: मसला अनोख्या पासून बचाव करा
4: RBI सांगते
3: जाणकार बना सतर्क रहा।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
6: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: FM 100.6 पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों की मधुमालती। लीजिए सुनिए विश्वात्मा फिल्म से साधना सरगम का गाया ये गीत। गीत लिखा आनंद बख्शीनी है और संगीत विजू शाह का।

रंगमंच फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और एसपी सुब्रमण्यम का, गाया समीर का लिखा ये गीत, संगीत में ढाला था आनंद मिलिंद ने। लीजिए आगे सुनते हैं विजय पथ फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया ये गीत। इस गीत को संगीत में ढाला है अनु मलिक ने।

0: रामलखन फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही आज की मधुमालती यही संपन्न करते हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र। लीजिए सुनिए मुख्य समाचार मराठी में।
1: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या परदेश दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्लोवाकियाची राजधानी ब्रातिस्लावा इथं पोहोचले। स्लोवाकियाला भेट देणारे ते

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात

0: ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूं मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद। गुलजार के बोल है और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए जैसा कि आपको बताया मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
3: मैंने तेरे

सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां, इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन है जो

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत आशा भोसले।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। जाने क्यों सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी। आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है, पसंद किया है, और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें गवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूं और जहां तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से, सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं, ऐसा क्यों भाई? अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है, हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है, लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अख्तर के जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा जागा चुकलासी। हमें मालूम

ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफर वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन जिंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पासा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं

तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया तो पक्का तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियों को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम।

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं? तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में साथ एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ

इतना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल जरूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला

नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
8: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें

0: चलेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमेरिकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री

0: इंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, आरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के

0: ये गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्न लाल भगत राम ने, सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा टिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
1: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
2: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
1: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
2: अच्छा लगता है।
1: तो चलिए विषय बता दें आज के।
2: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
1: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
2: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
2: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
1: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
2: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
1: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूब

0: खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे, जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े, है ना?
1: वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ हैं जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये।
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का।
0: तो मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग तीन।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
5: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
6: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
4: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

0: प्रोग्राम में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
1: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
2: ओ शीतला,

0: शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
1: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने, वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
0: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल से ही मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
1: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
1: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
0: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
1: कई महीने बीत गए, संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
3: कहां से आते हो भैया?
0: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
3: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगी।
0: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
3: हाँ।
0: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
3: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
1: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
4: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने।

0: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
0: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
3: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
4: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
5: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
4: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
5: जी।
4: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
5: तो सुनते हैं एक गाना।

0: सनम जिंदगी का बहाना।
1: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
2: और दुगना होके मिलता है।
1: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
2: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले ले।
1: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप
1: बिल्कुल,
0: जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं। उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज

0: चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
1: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
0: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ काम का
1: कर रहे हैं।
0: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
1: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब

0: एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पढ़ते, वो
1: बिल्कुल
0: कभी अवसाद का सामना नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है
1: और
0: कि नहीं?
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए, तो एक गाना सुन लेते
1: सुनते
0: हैं।
1: हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है, लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत जरूरी
0: है। बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी

0: जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
1: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
0: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
1: बीमारियों का खतरा
0: बढ़ जाता है। इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है, जो बोतल्स वगैरह हैं और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत, सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाएं।
1: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
0: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
1: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है,
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूड़ी होती है ना वो कड़क
1: रहती है। है जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल

0: मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है, उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा संभाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह

0: का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें, या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आएं, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आएं, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं, तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की कोशिश, सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए, तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके।

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे।

0: तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घुट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लगे रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घुट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना,
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया, और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की।
0: जी।
1: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल, टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी, पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक का,
1: किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना

0: चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए।
2: अच्छा।
3: कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक

0: डायरी बनाने लगेंगे कि हाँ रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा,
0: जी
1: तो
0: नहीं
1: ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है, तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है। नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है,
1: और
0: वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित
0: क्योंकि
1: नहीं
0: विचलित
1: करेंगी।
0: करेंगी नहीं आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है। और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती
0: जी
1: हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

0: कभी परम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
1: और फिर से अपना काम करें।
2: फिर से आप तरोताजा

0: हो जाएंगे काम करने, आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं,
0: हाँ जी,
1: थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान मग्न हो
0: वहीं पर
1: जाइए।
0: आप थोड़ा सा पाँव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए,
1: सीख
0: आप
1: करके
0: पहले
1: जी
0: सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी,
1: जी
0: मेरा
1: जी जी
0: मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की

शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने, माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को ढांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

पसंदिल है वक्त एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद, फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन,
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।

0: वारिस फिल्म का दो गाना था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल थे उत्तम जगदीश की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज़ में उजाला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ ही तारा ने नए पुराने ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनिएगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। प्रतीक्षा समाचारों की।
1: विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा

0: सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 22 जून ते 10 जुलै या कालावधीत मुंबईत भरणार। आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोलकाता इथं होणार। इराण अमेरिका शांतता कराराला दोन्ही देशांची मंजुरी, जगभरातल्या नेत्यांकडून स्वागत। नीट UG पुनर्परीक्षेची प्रवेशपत्र NTA कडून जारी।

0: भी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अशोक सराफ यांचा जन्म मुंबईतला। मराठीचे महानायक सम्राट अशोक चित्रपटसृष्टीत आईचा भाऊ हे जिव्हाळ्याचं नातं म्हणून ओळखले जाणारे अशोक मामा आणि सर्व रसिकांशी श्रोत नातं जोडलेले अशोक सराफ। बिनकामाचा नवरा या चित्रपटासाठी शांताराम नांदगावकर यांची शब्दरचना, राजेंद्र विनय यांचं संगीत, आशा भोसले यांचा स्वर।

पण झालं काय माहितीये, गेला रडत रडत स्वतःच ढसा ढसा

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। हमारे सभी फौजी साथियों और सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म कटी पतंग में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था राहुल देव बर्मन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला।

0: की मेहंदी इस फिल्म का गीत था किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

मुझको जन्नत। महेंद्र कपूर की आवाज में ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का गीत था। SH बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। सूरज फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफी का गाया। हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने। जयमाला कार्यक्रम की यही थी श्रोताओ आखिरी पेशकश। आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओ, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म के नगमे।

ये दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसर जयपुरी के बोल थे। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, फिल्म थी तेरे घर के सामने। और आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आपको हम सुनवा रहे हैं इसी फिल्म के नगमे।

सचिन देवर्मन की तर्ज हसरत जयपुरी के बोल मोहम्मद रफी की आवाज आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोताओ अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए तेरे घर के सामने इस फिल्म के नगमे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ओहो, पड़ोसी न जाने क्या सोचती होंगी कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह सुन रही हूँ जो तुम चिल्ला रहे हो।
3: ठीक है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: ओहो, पड़ोस ने जाने क्या सोचती होंगी कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह सुन रही हूँ जो तुम चिल्ला रहे हो।
2: ठीक है, लेकिन मैं, हाय मेरा दांत।
1: सुनो जी, मैं जब छोटी थी तो मेरा भी एक बार दांत दर्द हुआ था। अच्छा? उस वक्त मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म रुई का भोया रखा था।
2: भोया?
1: हाँ जी, रुई को गर्म देसी घी में भिगो कर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ, मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया था।
2: तो वही लाओ ना भगवान, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है।
1: अरे वही तो लाई हूँ, लो ये कटोरी में गर्म घी और ये रुई का भोया, लो ये मुँह में रखो, खोलो मुँह, ये लो। क्या हुआ भगवान, ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अरे क्या बात है, घी क्या ज्यादा गर्म था?
2: गर्म, ओहो, दांत के साथ सारा मुंह भी जल गया।
1: बाप रे, भगवान ने क्या,
2: कुछ भी नहीं खाया, खाली दूध पीकर गुजारा कर रहा था, अब तो दूध भी कैसे पिया जाएगा।
1: तो तुमसे किसने कहा था कि जल्दी से मुंह खोल दो, घी गर्म था तो थोड़ी देर ठहर जाते।
2: तुमने नहीं कहा था कि मुंह खोलो?
1: सुनो जी, एक बार और मेरे दांत में दर्द हुआ था।
2: अच्छा, फिर?
1: कसम से कहती हूँ, मेरी दादी जी घर पर आई हुई थी, बस उन्होंने फिटकरी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस,
2: फिर
1: मेरे दांत का दर्द फौरन गायब।
2: तो क्या फिर अब मुझे भी कुल्ले करवाओगी?
1: हाँ जी, मैंने फिटकरी जलाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, अभी लाती हूँ। कौन? आती हूँ। कांता बहन, आओ बहन आओ।
3: क्या बात है शांति बहन, क्या भाई साहब की तबीयत कुछ खराब है?
1: हाँ बहन, क्या बताऊँ, इनके आज सुबह से दांत में बहुत दर्द है। कसम से कहती हूँ, मेरे तो नाक में दम आ गया है।
3: क्या, दांत में दर्द? बहन मेरी मानो तो लौंग का तेल लगाओ। हमारे उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था।
1: हाँ।
3: मैंने लौंग का तेल लगाया, फौरन ठीक हो गया।
1: अच्छा, लौंग का तेल मगर यहाँ मिलेगा कहाँ?
3: मैं देखती हूँ, घर में शायद बचा हुआ पड़ा हो।
1: बड़ी मेहरबानी होगी बहन।
3: मेहरबानी की क्या बात है बहन, आए आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं अभी लाती हूँ।
1: ठीक है। मैंने कहा जी, लो ये गर्म पानी में फिटकरी घुली रखी है, लो कुल्ले कर लो।
2: पानी, पानी गर्म तो नहीं है?
1: देख लो ना।
2: हाँ ठीक है, मेरा तो मुंह न जाने कैसा कैसा हो गया।
1: अजी मुंह तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मैं कहती हूँ कुल्ले करो।
2: अच्छा ठीक है।
3: लो शांति बहन, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली है, मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ। अब ये रुई तुम मुंह में रख दो, ठीक हो जाएंगे। मैं जाती हूँ, सारा काम पड़ा है, जाके बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी साफ करने हैं।
1: सुनो जी, ए जरा ये रुई मुंह में रख लो, ये मुंह खोलो।
2: मगर ये फिटकरी का पानी,
1: ये बाद में कर लेना, तुम मुंह तो खोलो।
2: लो, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
1: अजी अब क्या है?
2: भगवान सर, तुम भाई साहब, तुमने रुई दाई साहब रखी है।
1: ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: तू बताता कैसे देवी जी, तुमने रुई से तो सारा मुंह बंद कर दिया था। खैर मैं खुद ही रख लेता हूँ। ऐसे
1: क्या हो गया?
2: मेरी तो जान ही निकल गई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब।
1: ओहो, मेरी मानो तो डॉक्टर के पास चलो।
2: डॉक्टर के पास?
1: इस मुंह में दांत को निकलवाना ही होगा।
2: मगर
1: अगर मगर कुछ नहीं जी, चलो डॉक्टर के पास
2: चलो। हाय मैं मरा, हाय हाय हाय मर गया रे।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब।
4: नमस्ते। हाँ, तो कौन से दांत में तकलीफ है?
1: देखिए डॉक्टर साहब, ना मैं सुई लगवाऊंगी और ना सुन करवाऊंगी, बस हम बहुत जल्दी में हैं, जल्दी से आप दांत निकाल दीजिए।
4: कमाल है, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत ही लगती हैं। कौन सा दांत है?
1: चलो जी आगे बढ़कर अपना दांत दिखा दो।
4: क्या आप? ये आइए, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए।
2: मगर डॉक्टर साहब, दांत निकलवाने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा?
4: बिल्कुल नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्स?
5: यस डॉक्टर।
4: जरा मेरे औजार तो देना।
5: ओके डॉक्टर। ली डॉक्टर।
2: क्या डॉक्टर साहब, आप इससे मेरे दांत निकालोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों?
2: मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा।
4: लगता है आप बहुत डर रहे हैं।
2: देखो देवी जी, मेरे तो सर घूम रहा है।
1: कोई बात नहीं,
2: बड़े बड़े औजार देखने में डरावने लग रहे हैं।
1: कोई बात
2: नहीं, ये डॉक्टर इनसे ही मेरा दांत निकालेगा।
1: अजी मैं कहती हूँ, तकलीफ भी तो दूर हो जाएगी, आज सुबह से ही तुमने सारा घर सरवर उठा रखा है।
4: तो आप तैयार हैं दांत निकलवाने के लिए?
2: क्या मतलब, मैं देखता हूँ कौन मेरे दांत को हाथ लगाता है।
4: ये क्या कहते हो,

0: मैं कहती हूँ दांत नहीं निकलवाना क्या?
1: नहीं बिल्कुल नहीं।
2: ये बैठे बिठाए क्या हुआ? ए हजरत दांत निकलवा लो।
1: बस खबरदार जो दांत का नाम भी लिया तो।
0: अजी तुम्हें क्या हो गया है? दर्द तो दूर हो जाएगा, अब दांत निकलवाओ।
1: हरगिज नहीं, मेरे दांत के पास आने की जरूरत भी की तो। चलो घर, फौरन घर चलो, मेरा दांत अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: लेकिन दांत?
1: हम घर जाकर अपना घरेलू इलाज करेंगे मगर दांत नहीं निकलवाएंगे।
0: अच्छा चलो
2: भाई। भाई मेरे दांत तो सुनो, मेरी फीस। भाई साहब सुनिए।
0: अजी मैं कहती हूँ उठना है कि नहीं? आए लो, ये तो मजे में सोने लगे। अरे उठो ना।
3: क्या?
0: एक कसम से कहती हूँ, जब से डॉक्टर के पास से आए हो सो ही रहे हो। लो चाय पी लो।
1: मगर पियूं कैसे, मेरी तो दांत के तरह से जान निकलने लगी है।
0: ओहो अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकलवाया? अब मैं क्या करूं?
1: ऐसा करो ये चाय तुम पी लो, मेरे तो दर्द।
0: हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूं?
4: क्यों बहन शांति, अब कैसा है तुम्हारी इनके दांत का दर्द?
0: क्या बताऊं बहन, इनका तो खाना पीना भी बंद है।
4: अरे ये दर्द भी तो जानलेवा होता है, तुम ऐसा करो
0: हाँ,
4: इनके जिस दांत में दर्द है ना
0: हाँ,
4: उसके नीचे ये पत्ते दबवा दो। अच्छा, फौरन ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा कैसे पत्ते हैं?
4: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी
0: हाँ,
4: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने, सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है।
0: लो जी ये पत्ते मुँह में रख के देख लो,
1: बड़ा चिरसा टेस्ट है इनका तो।
0: अरे ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
5: कमाल है, मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
4: अरे हाँ,
5: आ, आ, आ, आ, की आवाज तो आ रही थी, मैंने समझा शायद भाई साहब रोजाना की तरह रियाज कर रहे होंगे।
0: नहीं बहन, ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
5: अरे हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था कि आज रियाज कुछ लंबा हो गया।
0: हाँ बहन इनको बहुत तकलीफ है।
5: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया है?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
5: कमाल है, तुम ऐसा करो ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ, तुम फौरन जिस जगह दांत में दर्द है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन
5: अरे लेकिन वेकन को छोड़ रही। ले कमाल है, मीतू बहन भी आ गई। अरे आना आ मीतू।
6: आज मैंने भी सुना था कि इनके पति के दांत में दर्द है, मैंने कहा पड़ोसन के नाते।
5: बहन ये तो हमारा फर्ज है।
6: मेरी बात सुनो बहन हाँ। वो लहसुन मुँह से निकलवा कर ये मैं जो दवा रुई में लाई हूँ ना हाँ। ये रख दो फिर देखना।
0: लेकिन
6: लेकिन लेकिन कुछ नहीं बहन, एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ था तब डॉक्टर ने ये दवा दी थी, बस एक बार लगाई, आज पूरे 5 साल हो गए हैं, मजाल है उनके दांत में फिर दर्द हुआ हो।
5: लेकिन लहसुन तो कोई बुरी चीज नहीं है।
6: अरे तो इस दवाई को भी आजमाने में क्या हर्ज है?
5: आए कमाल है, देख लेना बहन कहीं 19-20 ना हो जाए। हाँ
6: मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? फिर डॉक्टर की दी हुई दवा है, ऐसी वैसी तो होगी नहीं।
0: लड़ने की क्या जरूरत है, लाओ मैं ये भी उनके मुंह में अभी रखे देती हूँ।
5: अरे कमाल है, अच्छा मैं तो चलती हूँ।
6: मैं भी चलती हूँ।
0: ये तो हमारी किस्मत है कि इतना अच्छा पड़ोस मिला है।
6: अरे मेहरबानी कैसी बहन, दुख सुख में पड़ोस को ही तो काम आना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
5: अरे आप जा नीतू अब।
6: हाँ बहन रमा चलो अब।
3: हाय राम रे, ओ हाय राम रे, हर गया।
7: दुखी राम जी।
3: कौन है भैया?
7: हाय दुखी राम मां।
3: आओ भाई हिदायती राम आओ।
7: सुना भाई खुशी राम मां, की हाल है? ओ यार एक ही मुंह लटका के बैठा है।
3: अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा है भैया।
7: ओए की होया तेनु दर्द?
3: दांत में दर्द है।
7: ओए कुछ दसेंगा भैया, हाय हाय हाय लगा रहे हैं।
0: ये कैसे बताएं भाई साहब, इनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया कुछ बनता ही नहीं।
7: बस कमाल है भाई जी। जरा जी बात दे बच्चे, इतना हंगामा खड़ा कर लिया।
0: जरा सी बात। अरे भाई साहब सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसने जैसी दवा बताई वैसा ही किया, मगर क्या करूं?
7: फायदा नहीं होया। हो ही कितना सकता है जाए जी, कुछ नुस्खे होंगे ना नुस्खे, जो सिर्फ किसी किसी ने मालूम होंगे ने। ओए ठहर जा, ओए ओए गल सुन, ओए दुखी रामा ठहर जा, उन्हीं तन्ना आ ले ले आ ले रगड़ तन्ना आ फल आ शाबाश ले ले ले ले। ओ तेरी किस्मत चंगी है, असि इत्थे आ गए हैं।
0: तंबाकू?
7: हाँ
3: मगर इससे क्या होगा?
7: ओए पूछ के इतना होएगा कि नहीं? ओ तू भी यार अजीब आदमी है। वेखो देख दांत च दर्द उदो हुंदा है जो दांत च कीड़ा लगा होवे।
3: कीड़ा?
7: हाँ कीड़ा, कीड़ा भी उदो लगता है जो मिठा खाता होवे।

0: और तू जरूर मिठा खाता होना है।
1: हाँ यार कल मैंने लड्डू खाया था।
2: मगर तुमने लड्डू कब खाया जी?
1: अरे भगवान, दफ्तर में कांता ने अपनी शादी की खुशी में बांटे थे।
0: तमाकू दंदे थल्ले रख ले तो कीड़ा मर जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा।
1: मगर
0: छाटो और मुंह दे अंदर ना जान दी। हाँ शाबाश,
2: दर्द ठीक हो जाएगा जी।
1: मुझे
0: दादाजी,
1: मुझे
0: 5 मिनट लगेंगे।
1: चक्कर आ रहा है।
0: चक्कर आएगा, ओए दंद दे कीड़े नु भी चक्कर आएगा, ओ नट्टन ले बाहर आएगा। ओए ओए ओए ओए ओ गा सुन, ओ दुखी रामा, ओ ओ इसके हम ले रहे हैं। ओ ओ हो हो, ओए ओए ओए की होया तनु?
1: दांत बाहर गिर गया।
2: दिखाओ तो, अरे अपना मुंह तो खोलो।
0: दंद बाहर निकल गए।
1: दांत में दर्द था वो भी, और उसके पास वाले दो दांत भी बाहर।
2: अरे दिखाओ तो सही, क्या हुआ?
0: ओए दांत निकल गए सारे।
1: उसके साथ थोड़े भी दांत बाहर गिर गए।
0: कितने दांत?
1: दो।
0: दो निकल गए?
1: हां जी।
0: गया ना?
1: ओए
2: दो। दिखाओ तो, हाथ खोलो। दांत भी गया और दर्द भी गया। हाय हाय चिल्ला रहा था रात से। अब चलो सब हॉस्पिटल से चैन से तो

हवा महल में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

देवदास फिल्म का गीत आपने सुना, के कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, नुसरत बद्र के बोल थे, इस्माइल दरबार का संगीत था।

जिस देश में गंगा रहता है, फिल्म का गीत था सुखविंदर सिंह और श्रद्धा साधना सरगम की आवाजों में देव कोहली के बोल थे।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिव और मुश्तबा अजीज, नाजा की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश चंदन शिव के बोल थे, शैल प्रतेश, नितिन शंकर की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। फिल्म अशोका, चित्रा की आवाज। गुलजार का लिखा ये गीत है, अनु मलिक का संगीत।

0: बंटी और बबली इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का क्षेत्रीय कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरी धड़कन, स्वर राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं मराठी में मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी नागपूर, समृद्धी शनमारे आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा तसंच कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्ली इथं 15 ते 17 जून 2026 या कालावधीत विकसित भारत युवा संसद 2026 चं आयोजन करण्यात आलं आहे। युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले कुछ ही पलों में आप सुनिएगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। समाचारों के लिए प्रतीक्षा चंद लम्हों की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में

0: योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली अंबाला और

0: बेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए।
5: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म जंगली, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

आपकी परछाइयां इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहदेली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

राजा जानी फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: एन दत्ता की तर्ज थी साहिल उदयनवी का लिखा ये गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल यादें

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: वो पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव

साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूंगा।

0: सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।
1: बोले रे भंवर सुन सुन सुन क्या

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म

फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर

0: रास्ते में।
1: सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुरीली धड़कन विविध भारती से हम बोल रहे हैं। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
3: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है। हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाजा है।

तिलिस्मी नजरों ने देखते ही बांध लिया है दिल को, नैनों की जादूगरी का क्या कहना। आंखों में सुरूर, लबों पे मुस्कान, यही है पहचान दिलबर की, इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

0: बेरुखी का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा, गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।
1: ये कली जब

ना रहा वो गुलशन, अब वो हवा भी तो नहीं है। समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तां भी तो नहीं है।

0: स्वदेशी। याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।
1: वीको वज्रदंती।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित

आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजरायल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्र

0: ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 और 20 सेकंड हो चुके हैं। आपकी नजर चंद बेला के फूल। आइए सुनते कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इसे रचा है साहिर लुधियानवी ने रवि की तर्ज। फिल्म आज और कल के लिए।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना बारिश फिल्म का ये गीत, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ। संगीतकार थे सी रामचंद्र। और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में मजरूल सुल्तानपुरी का रचा हुआ ये गीत है, तर्ज आर डी बर्मन की फिल्म कारमा।

कारवां फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। शब्दकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन। विविध भारती पर इस समय जारी है कार्यक्रम बेला के फूल। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं साहिर लुधियानवी की यह रचना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है जिसे संगीत से सजाया है रवि ने।

बेला के फुल कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मनीष का ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आंसू बन गए फूल, इस फिल्म के लिए।

बेला के फूल। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आपने सुने आज और कल, बारिश, कारमा, आदमी और इंसान और आंसू बन गए फूल, इन फिल्मों के नगमे। उम्मीद है आज का ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। और अब दीजिए इजाजत कार्यक्रम समाप्त करने की।

आकाशवाणी नागपुर का यह विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आई श्रोताओं, अब हम आपको अवगत करा दें मौसम संबंधित जानकारी से। बीते 24 घंटों में नागपुर का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस, जो औसत से 1.7 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, जो औसत से 1.7 डिग्री कम था। अब अनुमान यह भी है कि आने वाले 24 घंटे में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्र में गरज के साथ अब बारिश आने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ये था मौसम का हाल। FM बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागपुरचं हे विविध भारती केंद्र आहे। रात्रीचे 11:30 आणि 25 सेकंद झालेले आहेत। आमच्या केंद्राचे कार्यक्रम आता संपलेत। पुन्हा आपली भेट होईल उद्या सकाळी 5:55 शुभरात्री। जय हिंद।